दृढ़ हर नाम त्या अज दे पावन हुक्मनामा साहब चौथे पातशाह धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तार।

जो सतगुर सन संगत नहीं आए त्रिक जीवे त्रिक जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग जी माला पंजवा।

प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहो। जनन पिता लोक सदबंता कोय न किसकी धरिया, सिर सिर समाहे ठाकर काहे मन भाव करिया। उड़े उड़ावे सह को साथ पाछे बचरे शरिया, तेन कौन खलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकर कटल धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइया, तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख

ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत के अवतारा सोए गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजाजने आप सुवारी। सिवकन को सब गुण सुख दियो शत्रन को पल मोहद कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत।

माता पिता का कोई दोष नहीं होता अगर बच्चा नलायक निकल आवे तो, गुरु का कोई दोष नहीं होता सीखने वाला नलायक हो। गलतियां सारिया मेरिया ने क्योंकि उन्होंने कोई मैं सिखाने च कमी नहीं छी, कमियां मेरे च ने। तो असीस देना ये पहला मैं 6 मात्रा के शब्द

आप साथ सुन रहे एक कुदरती समा बढ़िया है, नहीं तो मैं बड़ी दूर सा ते थक गए सा बड़े कीर्तन कर करके। तो मैं सोचा भी थोड़े दिन इन्हों बच्चों को जाके आराम किया जाए, पर मैनू पता नहीं प्रोफेसर साहब ने कितों पता लग गया कि मैं इत्थे ही हाँ। इन्हों दे फोन ते फोन भी आओ, भावें थोड़े समय वास्ते आओ, जरूर आओ। और खुशी की गल सत्कारयोग भाई सरबजीत सिंह जी ये भी हाजिर ने, बड़ा मन प्रसन्न होया बच्चों स्टूडेंट्स को सुन के, आनंद ही आनंद बनिया हुआ है। ऐसी बरसात हो रही है, ऐसा मीह पै रहा है, ये मीह कदी पै जाए सही हिरदे रूपी धरती पे, ये मीह फिर सुकता नहीं। सतसंगत बोलो श्री, मेरा ख्याल है मल्हार बहुत हो गया जो शब्द पढ़ लिए अपना, दूजा की आ गया थोड़ी।

0: लगातार दास एक जगह कब्जे च आ गया सी। घट्टो घट 6 महीने गया सा 2 हफ्ते वास्ते, उन्हें 6 महीने छड़े ही नहीं। कहते दरवाजा बंद कर देंगे, बाहरों ताला ला देंगे जे गए। बड़ी मुश्किल बेनतियां करके भी हूँ सानू आग्या दो, बहुत समा हो गया। बड़ी मुश्किल उतों आग्या लैके, तो फिर मैं क्या चलो सैक्रामेंटो चलते हैं, थोड़ा का आराम कर दें। तो दसना किसी ने भी नहीं, मैं उन्होंने कहा बिल्कुल खबर ना कर गुरु ने पता नहीं आप जी ने दर्शन कराने सन। ये दास के भागें से साढ़े सत्कार योग। कितने साल हो गए प्रोफेसर साहब जी ने सू जो लुधियाने इन्हों की अकैडमी होंगी सी, दास सैकल लैके पहुँचता सी इन्हों को। फिर जो अकैडमी के सारे बच्चों सिख लैना चले जाना, फिर मैं घर जान लगना तो इन्होंने कहना नहीं हाल जाना नहीं, हाल थोड़ा घूम फिर के आइए। फिर मैं सैकल के नाल नाल तुरिया जाना, तो प्रोफेसर साहब नाल नाल टली वजाई जानी। ये साड़ी जिंदगी रही है, लाइफ बीती है इन्हों के नाल। बख्शिश है इन्हों की जे कुछ सानू गाउण दा तरीका आया कुछ। वैसे तो बहुत औखा ही औखी मंजिल है सत्संग, बड़ी औखी है। गुरु मेहर करन बड़ा वड्डा उपराला प्रोफेसर साहब इत्थे कर रहे हैं। सतगुरु इन्हों तंदुरुस्ती दे, अरोगता लंबी उम्र बख्शे, पुल चुक दी क्षमा सारिया का धनवाद। फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का
1: खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही धन्यवाद हैं भाई सरबजीत सिंह रंगीला जी दे, समा बन दिता थोड़े जे टाइम बेच ही इन्हों का

जो एक गायन स्टाइल है मल्हार राग नू बहुत ही ऊंचाइया ते लै गए ते वाहेगुरु होर मेहर करन बख्शिश करन अच्छा जिहड़ी सेहत अच्छी बख्शन इस तरह ही पंथ की सेवा करते रहन। ते हुण मैं बेनती करदा हाँ कि साडे बहुत ही सुरीले प्रोफेसर बलजीत सिंह जी सुरभी जो कि अजकल रिवर साइड रहिंदे हन ते ये 35 मिनट लई कीर्तन की सेवा करनगे। प्रोफेसर बलजीत सिंह जी इन्हां दे उस्ताद प्रोफेसर जशपाल सिंह जी पंजाबी यूनिवर्सिटी उन्हां को इन्हां काफ़ी साल तलीम लैंदे रहे रागां दी ते उस बाद जलंधर लवली जिहड़ा इंस्टीट्यूट कॉलेज है उस विच भी कुछ देर पढ़ाते रहे। पिछले साल 31 राग दरबार सिंह अजे भी इन्हें हाजिरी लगाई सी। इन्हां दे नाल संगत कर रहे हैं हारमोनियम ते मनजीत सिंह, वायलन ते साडे बेरिया दे ही सुख अमृत सिंह जोड़ी ते संगत कर रहे हैं जुजार सिंह ते तौस ते संगत कर रहे हैं सुनेहा कौर। आओ प्यार नाल कीर्तन सरवण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: सत्संग जी, मैं तो की बोलना, मेरे वड्डे भाग समझदा मैं कि भाई साहब मेरे नाल आके बैठे
1: हैं।
0: बहुत शुक्रिया आप सात संगत का, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने इन्नी एकाग्रता बख्शी, इन्नी को सेवा प्रवान करो जी। गज बज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का
2: खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही धन्यवादी हाँ प्रोफेसर बलजीत सिंह सुरभी होना दे, ते नाल ही भाई सरबजीत सिंह जी लाडी, जो कि बिना प्रैक्टिस तो एकदम नाल आके रंग बन देना, ते बहुत ही रस बिना कीर्तन गायन किया। तो नाल ही मैं सुख अमृत सिंह का बहुत धन्यवादी हाँ, स्नेहा कौर ते साढ़े जुझार सिंह जी, सारे जथे का बहुत धन्यवादी हाँ। ते हुण अखीर विच मैं बेनती करदा साढ़े सत्कारयोग उस्ताद रणजीत सिंह जी, जो कि जिन्हां दे उपराला सदका हमेशा ही दी तरह ये कीर्तन राग दरबार मल्हार दरबार दा आयोजन किया गया। इन्हां दा महाराज इस तरह इन्हां नूं तंदुरुस्ती बख्शे। इस उम्र च आ के भी ये हमेशा कहते, जदों भी दलबीर सिंह आपां मल्हार दरबार जारी रखना, बंद नहीं होण देना। सो शुरू तो देखो बच्चों ने भी कीर्तन किया, बीबिया के जथे ने भी अज बहुत अच्छा कीर्तन मल्हार राग विच ही गायन किया। तुसीं किन्ने तरह के मल्हार दे किन्ने अलग अलग इन्हां दे प्रकार हैं। अज तुसीं मेघ मल्हार भी सुनिया, मियां की मल्हार भी, शुद्ध मल्हार भी सुनिया, सुरदासी मल्हार भी। तो हुण मैं अखीर विच बेनती करदा हाँ उस्ताद जी जो कि स्टेज पर आ गए हैं, तो इन्हां दे नाल अपने भाई सरबजीत सिंह लाडी जोड़ी तो संगत कर रहे हैं, जुझार सिंह रबाब से संगत कर रहे हैं, तो मनवीर सिंह जी हरमोनियम संगत कर रहे हैं, एकम सिंह तानपुरे ते हैं। आओ प्यार नाल कीर्तन श्रवण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

अनंत ज्योति कैसी आरती होए भवखंडा तेरी आरती अनता सबदवा जंत पेरी राहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध हिव चलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब मह चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस भाव है सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे आही पियासा कृपा जल दे नानक सारंको होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महल्ला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडोत पुन वड्डा हे राहाओ साकत हर साधन जाने तिनंतर हाउ मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चलह चुभ दुख पाव है जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे पुरख पाया अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम धार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे

कहो। सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसिए गुरु के, दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, वाहे गुरु साहिब जी।

भक्त जना के मन विश्राम रहो। प्रभु के सिमरन गर्म नाम वसे, प्रभु के सिमरन दुख जम नसे, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अंधन जागे, प्रभु के सिमरन भाव ना व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे, प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसे दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभु के सिमरन दरगह मानी, प्रभु के सिमरन होय सो भला, प्रभु के सिमरन सुफल फला, से सिमरे जिने आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभु का सिमरन सप्ते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सबके सुजे, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदमाए समाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तन बनते, प्रभु को सिमरे से पत बनते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दे आला, नान जन की मंगेर वाला, प्रभु को सिमरे से पर उपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख विहावे, प्रभु को सिमरे तिने आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिने अंध कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु के सिमरन कबू न झूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी, प्रभु के सिमरन नेचले आसन, प्रभु के सिमरन कमल बेगासन, प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार, सुख सा सिमरन का अंत ना पार, सिमरे से जन जिनको प्रभ मैया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय, हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी जो चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल कारा, हर सिमरन मैं आप निंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ है नाथ, संत महरी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जय मात पिता सुत मीतना भाई, मनुहा नाम तेरे संग साए, जय मां भ्यान दूत जम दले, तै केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत

नानक पावो सुख नेरे सगल शिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जातो ए सुखिया लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तरे अनक माया रंग तिख नाम बुझावे हर का नाम जपत गावे जे मार गे जात केला ते हर का नाम संगो सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याये नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत पार पराई अनक बिगन जे आए संघारे हर का नाम तत्काल उदारे अनक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कबू न धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे।

नानक जन कै वृत विवेक कै हर का नाम जन को मुक्त युक्त हर कै नाम जन को तृप्त भुक्त हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत किस नाय विजोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप प्रभु दीना हर हर जन कहे ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत पर नहीं छपै हर की भगत मुक्त भव करे नान जन संकेत तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लता नाम की महिमा संतृत बसे संत प्रताप दुर्त सब नसे संत का संग बड़ भागी पाई है संत की सेवा

मन कामना तीर्थ ते छुट्टे गर्भ गुमान न मनते उठे सोच करे दिन सिर रात मन की मैल न तंते जात इस देही को बहुत साधना करे मनते कहू न विखिया टरे जल धोवे बहुते अनीर शुद्ध का होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहु मूझ बहुत सियाण जमका पौ व्यापे अनक जतन कर तृष्ण ना त्रापे पेख अनेक अगने बुझे कुड़ भाव दरगे निसजे शूर सुनाई उपे आल मोह व्यापे माया जाल अवर करतू सगली जमडा ने गोविंद भजन बिन तिली माने हर का नाम जब तू दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जेको मांगे साजना की सेवा लागे जेको अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सतगावे जेको अपनी शोभा लोरे साध संगे होमे छोरे जेको जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे जे जन को प्रदर्श पे आसा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गरिये सबते ऊंचा जाका मन हो सगल किरी ना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल श्रिष्ट साजना।

जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह वसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम प्रवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अम्बुद्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी

कई कोट दर्शन पर प्यास तिन को मिलियो प्रभु अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट काश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जुत कीनो विस्तार।

अपने रंग सब ते दूर सब के संग बूझे दिखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे नाम से आवे ना जाए नान सदी रहा समाए आप उपदेशे समझे आप आपे रचा सबके साथ आप कीनो आपन विस्तार सब किस उसका हो करने यार उसे पिन कहो किस होए तन तरंतर एक कैसो है अपने चलते आप करने यार कौतक करे रंग पार मन में अब मन अपने माए नान कीमत कहन जाए सत सत सत प्रस्वामी गुर प्रसाद किने मखियानी सच सच सत सब कीना कोट मदे किन विरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर या पार नूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कर सुनी सरम मखियानी

नाथ। तिसका हुकम बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर पव सोए, नानक बिघन लागे कोए, उस्तत मन में करनंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार।

जो किस करे सो प्रभु के रंग सदा सदाप से हर संग सह सभा होवे सो होए करने हर पछाने सोए प्रभु का किया जन्मी ठलगाना जैसा सत है सत अष्टाना जिसते उपजे तिसमाए समाए हो सुख निधान ऊनू बनयाए आप उसको आप दीनो मान नान प्रभजन एको जान श्लोक सर्वकला भरपूर प्रभ बिरथा जन हार जाके सिमरन उदरिय नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गान आर्क बाल सब्जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता सिस मन माए तिसते बिरथा कोई नाए रे मन मेरे सदार जाप आवनासी प्रव्यापे आप आपन किया कछु न होए जिसो प्राणी लोचे कोए तिसमें ना

अंतर हुआ ना होगा। जाप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उस निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नान सो जन निर्मल दिया जाके मन गुर की प्रतीत जन आवे अर्पव चीत।

जन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता। शलोक रूप ना रेख ना रंग के चित्रा गुण ते प्रपिंत जे बुझाए नानका जे सोवे सो प्रसन्न अस्पदी। अवनासी प्रमन में राग मानु की तू प्री त्याग तिस्ते परे ना किस कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गीर सुजाना।

सेवा करत हुए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। आपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुरु की मातले बीस विश्व गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने।

के संग ना लेप। मन में रख हर हर एक अंधकार दीप प्रगासे नान भरम मोह दुख दाते नासे तप्त माए ठाण वरताए अंध पे आदुक नाठे पाए जन मन के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे। पाओ चुका निर्भव हुए बसे सकल व्याद मंत्र कह न से इसका साधन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी तिपा चुके परम गमन सुन नानक हर हर जस सरवण। निर्गुण आप सरगुण भी होई कला धार जिन सकली मोए अपने चरित प्रव्याप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाई कोए सर्व निरंतर एको सोए। ओत बोध रव्या रूप रंग पै प्रकाश कह संग रचना अपनी गलतारी अनकबार नंद बलिहारी श्लोक साथ ना चाले बिन भजन मिख्या सगली चार।

चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के किल बिख जाए। आप जपो अबरा नाम जपाओ संत गायत रहत गद पाओ सार भूत सदर को नाओ सह सुहाय नान गुन गाओ। गुण गाव तेरी उतरस महल बिन सजाए हमें बिग पहल होए चिंत बसे सुकुनाल सास ग्रा सर नाम समाल छाठ स्याण सगली मना साध संग पावे सतना। हर पूंजी संच करो व्यवहार इया सुख दरगे जयकार सर निरंतर एको दे कौ नान जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाए एक सिमर एको मन आए। एक सके गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक करा पूर्ण पूर्यो प्रभ्या मन विसार एक ते पै एक रात प्रास्त गए मंत्र अंतर एक प्रवरता गुरु प्रसाद नानक एक जाता।

उपजे प्रीत प्रेम रचाओ मंथन अंतरे हे सुहाओ नेत्रो भेख दर सुखो हे मन विकसे सा चंद हो भगजना कह मंथन रंग बिरला को पावे संग एक बदी जय कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर सह समाये प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत शल सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल

गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त के पूछ लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपने आप आप ही चर्चा नानक आपन उप आप ही प्रजा जैन मन पुरख पुरख पद होता दे मैल कहो गए तो ताम। जय नंजन का निर्माण तय कौन को मान कौन अभान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय शल शिदर लग्न को की स। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तय से भू कौन।

करना जाय तीर्थ नावा जैत पावा बड़पाने के नाय करी जैत सिरठ उपाई वेखावण करमा के मिला लई मत विच रतन जवाहर माणक जिक गुर के सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई।

अजीतं पीतं बाहें गाहें मानें दानें नेक हैं फिर एक हैं भुजंग प्रजा चंद। नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे भिक्खी अभेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वभौणे नंगी नाते नसंगी प्रमाते।

नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे नंगी नामे समस्ति स्वरूपे परवंगी परमाते समस्ति विपुते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रेश्रम परम रूपे नमो जोग जवेश्रम परम सिद्धे नमो राज रेश्रम परम विरदे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो रूप माता पेखी परमी भोगी भुगते नमो जोग जवेश्रम परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत परे देवेश धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो शाह नमो भू भूपे नमो दान दान नमो मान मान नमो रो रोगे नमस्त शिनान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचिदानंद सर्व प्रणासी नूपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बिरद करता अदोद अर्धंग अगं ओघर्ता परम परम परमेश पुष्पालन सदा सर्वदा सिंधाता दयालन शेदी भेदी नाम काम समस्त उपराजी समस्त सत धाम तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पै हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं भेस हैं भजंग प्रजा छंद अगाधे बाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्त निधान्य नमस्तम नरार्थे नमस्तम परमार्थे नमस्तम अगंजे नमस्तम अपंजे नमस्तम अकाले नमस्तम पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेषे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे

प्रीतम। नमो सर्वज्ञान नमो परमतान नमो सर्वमंत्र नमो सर्वजंत्र नमो सर्वदर्शन नमो सर्वकीर्षन नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे। नमो जीव जीव नमो बीज बीज खिज बीज समस्तम प्रसिज कृपाल स्वरूप कर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदनवासी। चर्प छंद प्रसाद अमृत कर में मृत धर्म खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे खल धर्म लख कर्म सर्म दाता सर्म ज्ञाता सर्म पाने सर्म माने सर्म प्राण सर्म त्राण सर्म भुगता सर्म जुगता सर्म देव सर्म पेवम सर्म काले सर्म पाले। रवाल छंद प्रसाद आद रूप नाद मूर्त जोन पुरख पार सर्व मान त्रिमान देव भेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर ततर विराजी अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त जोन आद सेख देश और न भेज जाकर रूप रेख न राग जतर ततर दिशा फैल्यो अनुराग।

देव भेव ना जाने जय भेद और कतेव रूप रंग न जात पास जाने कजेब ताप मात न जात जाकर जन मन बहीन चकर वकर फिरे चतर चक मानी पुरती लोक चौदह के विखे जग जापी जय जाप देवनाथ मूर्त थापे सब जय थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचयो स्वंभ गण पंजनहार कालीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत भूत लख भेष

चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए चाचरी छंद ना सतरे ना मित्रे ना परम ना पितरे ना कर्म ना काए आ जन्म आ जाए।

प्रसाद भक्ति संत व प्रसाद कथते के शिज देसे के पिज पेसे के गंज करमे के पंज भरमे के पिज लोके के दित सोके के बदूत बरने के विभूत करने के राजन प्रवाह हैं के धर्म तुझा हैं के शोक भरने के सर्व भरने के जगत कीर्ति है के शत्रन क्षत्रिय है के ब्रह्म स्वरूपे के अनुभाव अनुपे के आद देव के आप भेव है के चित्रम बेहीन के दीन के रोजी रजा के रही मेरा हाक के पाक भी है के गैबुल गैवें के अबुल गुनाहे के शान शाह के कारण को निंद है के रोजी दहन है के राज कर रही मैं के कर्म करी मैं के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानी है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौने के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मानने के सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे के सर्व कलिमे के परम पहिमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशर सलामे सलीखत मुदामे गनी मर्श किस्ते

समस्त उपराज सदा सर्व सहज समस्त सुलाम स्त्रीवल काम निर्बाध स्वरूप अगाध अनूपे वो अंगाध रूपे नाद स्वरूपे अनंगी नाम त्रिभंगी त्रिकाम त्रिभंत बाध्य गंजे अगाध्य सुभंग सर्वभाग्य सुसर्व अनुराग्य त्रिपुक्त स्वरूप है शुच है श्रुत है के नरक प्रणास है पृथ्वी और प्रवास है नुक्त प्रवाह है स्तेव सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुरूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुरूप है चाचरी छंद

हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निश्चिंत हैं, सुनंत हैं, लिख हैं, देख हैं, लेख हैं, पेख हैं, डाह हैं, गाह हैं।

अनंगे नाम त्रिपंगी त्रिकाम निर्वंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोतरे न पुत्रे न सतरे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसाक श्री कह मितो अमी कह देव प्रा है जय है जा है भक्ति शांत प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सलसलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है के उसल चराग है के कामल करीम है के राज करीम है

चुनचुन सदर मारे मारिये आप आदे मुझे वरिय मन काल का त्रास न वरिय उजो सदा हमारे पच्छा श्रीय तुझो करे और अच्छा राख ले मोह रखना रे साय संत साय प्यारे दीन बंद दुष्ण के अंता तुम पुरी तरसकंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए सिज्जी अवतरा काल पाए कर्वसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सब कियो वेद राय ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार रहता है हमारा जमन काल सा जगत मनायो देव दैत जशन बजायो।

पौड़ी सतगुरु बेटो वारे जित मिलिया कसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दिन लगे डुबे सवन जा रहा सतगुरु है बहुत थावर लगने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया।

महाराज जी कहते अपने गुरु तो बलिहार जाओ, बार ने लख बार ने नाम साहेब को प्राण अधरी, बार ने बलिहार ने नाम साहेब को प्राण अधरी। अपने प्राणा का आसरा बनाओ वाहेगुरु, प्राणा का आसरा वाहेगुरु नूं किवें बनाउणा है?

निर्मल हो जाती, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, वो सच्चे हो जाते हैं, निर्मल हो जाते, मैल नहीं उन्होंने अंदर रही, पूर्ण हो जाते अंदरों। महाराज जी कहते इदां दा जिहड़ा रब दा प्यारा हुंदा ना, कहते सारी दुनिया उहदे ते चिकड़ सुट्टे, उहदी निंदिया करे, उहनू माड़ा बोले, उहनू जो मर्जी कहे,

क्योंकि संत समूह अनेक मती के अनेक तरह के सुभा होंगे संतान महापुरशा के भी इंसाना के भी रब के प्यार कोई बहुत सेंसटिव हों किसी फर्क ही कोई नहीं पता कदों दुनिया भावे जो मर्जी कहती रहे जो महाराज के अगे गुरु ग्रंथ साहब के अगे आके खलोना ना बस सिख का सिर जिहड़ा शर्म नाल नहीं झुकना चाहिए आखो सतनाम गुरु दे अदब च झुकना चाहिए जिन्ना चिर गुरु दे अदब च सीस झुक रहा साडा सानू महाराज दे अगे आउण लग्गिया शर्म नहीं आ रही समझ लो साची पूर्ण निर्मल रीत साडी मर्यादा भी सच्ची है साडा अंदरला भी सच्चा निर्मल है सब कुछ ठीक है क्योंकि जिहदा सब कुछ ठीक होवे ओही अदब सहित आके झुक सकता है नहीं जदों बंदा अपनी ही नज़रां च डिग जे उन्हें गुरु दी नज़रां च की खलोना है।

सुत सगल समगरी तुम रह सुतर तारे तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास बोलना जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिह जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करन उन्हें दया वे ताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय

असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह है उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विच।

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत वे आई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी।

पहले श्री अखंड पाठ साहिब दी सेवा समूह संगतां वल्लों हर साल दी तरह संत बाबा कन्हैया सिंह जी पठलावे वाले संत बाबा सेवा सिंह जी संत बाबा भाग सिंह जी संत बाबा लाभ सिंह जी संत बाबा हरभजन सिंह जी पलवान किला आनंदगढ़ साहिब वाले समूह महापुरशां दी याद रमाउंदिआं होइआं सच्चे पातशाह जी समूह महापुरशां दी याद मनाउंदिआं होइआं संगतां वल्लों पहले श्री अखंड पाठ साहिब दी सेवा करवाई है। कृपा करनी पातशाह जीओ संगतां दी कीती होई तन मन धन द्वारा सेवा सफली करनी किरत कमाइयां विच वाधे पाउणे महापुरशां दीआं मनाईआं होईआं जादां सफलियां करनीआं तंदरुस्तीआं बच्चिआं नूं गुरमत दे दान विद्या दे दान बख्शणे समूह संगतां वल्लों बच्ची हरलीन कौर दे जन्म दिन ते शुकराना करदिआं अरदास बेनती है तंदरुस्तीआं बख्शणीआं। दूसरे श्री अखंड पाठ साहिब दी सेवा कालों होठी सेखों ते चावर परिवार वल्लों सच्चे पातशाह जीओ मनजोत वीर सिंह ते गुरप्रीत कौर कमलजीत सिंह गुरिंदर कौर हरवीर सिंह ते संदीप सिंह संदीप कौर सच्चे पातशाह जीओ अते रिंपल कालों सच्चे पातशाह जी इंद्रजीत सिंह समूह परिवारां वल्लों आप जी वल्लों दित्तियां दातां दा शुकराना करदिआं होइआं करवाई गई है। परिवारां दी कीती होई सेवा सफली करनी किरत कमाइयां विच वाधे पाउणे तंदरुस्तीआं बख्शणीआं समूह परिवारां दीआं गुरमत अनुसार मनोकामना पूरीआं करनीआं चढ़दीआं कला बख्शणीआं। तीसरे श्री अखंड पाठ साहिब दी सेवा समूह बासी परिवार वल्लों कुलदीप सिंह वल्लों सच्चे पातशाह जी अपने पुत्र मनप्रीत सिंह जसवंत सिंह अते पोतरीआं तासमीन बासी सुरबीन बासी निर्गुण बासी समेत सच्चे पातशाह जी समूह परिवार की तंदुरुस्ती वास्ते करवाई गई है।

संतोख था परखिया जिन सूत कि जिहड़ा धर्म है भाई वह दया का पुत है ते जिस हिरदे च दया नहीं ना वो हिरदे च धर्म कदे हो नहीं सकता। जिथे दया होएगी

तारू सिंह दे वारस नहीं बन सकते। जिन्होंने कुर्बानियां अज तक कीतियां ने जा करनगे आने वाले समय उन्हां दी याद रखियो, कमाई बहुत बड़ी होएगी। गल्लां करन वाले, कुरैतां करन वाले, दिने रात माया दी दौड़ च भजे रहण वाले लोग कुर्बानियां नहीं कर सकते। बाणी नाल जुड़े हुए

गुरु प्यारी सुवारी सत्संग जी, आप बड़े भागे हो जो सतगुरु जी ने बख्शिश करके अपनी गोद विच बैठन दा इस वक्त समा सानू सबना नू बख्शिश किया है। आओ सारे रल के अपना सतगुरु जी दे जस नू सुनीए गावीए ता जो ये समा जो सानू गुरु चरणा च नसीब होया है सफला हो सके। सब दे चरणा च बेनती है जिथे आप जी ने बाणी नू श्रवणा दे नाल सुनना है, नैणा दे नाल आप बाणी नू पढ़ रहे हो स्क्रीन दे उपर, ते नाल नाल रसना नू पवित्र करन दा यतन करिए, नाल नाल बाणी नू गाउन दा यतन करिए, गुरु दी खुशी दे पात्र बणीए। सतगुरु जी दा बचन

जो एक बार अपनी जुबान तो धन गुरु रामदास महाराज का नाम लेंदा है, गुरु नूं चेते करदा है, तो उन्हूं की प्राप्तियां हुंदियां ने। वो प्राप्तियां हुंदियां ने जिहड़ियां बहुत मुशक्कत दे नाल भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। की कहिंदे ने पट साहिबान, जिह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जिहड़ा साडा अग्ञानता का अनेरा है वह खत्म होंदा है किदे नाल? धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी नूं ध्यान दे नाल आखो सतनाम। जिह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन, जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन। हिरदे दे विच नाम का वासा हुंदा है की करन दे नाल? धन धन श्री गुरु रामदास महाराज का नाम लैन दे नाल। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, तपदे हुए हिरदयां दे विच ठंड पैंदी है, किस तरह? धन गुरु रामदास महाराज कहन नाल। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे। ओ रिद्धियां सिद्धियां, ओ ताकतां, ओ बरकतां जो योगी लोग तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, धन गुरु रामदास महाराज के चरणों का ध्यान करके असी प्राप्त कर सकते। आखों सतनाम। फिर अगे कहिंदे, ऐसे दीन दयाल सतगुरु नू जिस तो इतनियां प्राप्तियां हुंदियां ने, फिर की करना चाहिदा है? जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन। संगत विच आपां बैठे हाँ, गुरु ने बख्शिश की है ते गुरु नूं धन धन कहीए। मिल संगत धन धन करो, जिह सतगुर लग प्रभ पाई है, सो सतगुर सिमरो नरो। जिस वाहिगुरु नूं धन गुरु रामदास महाराज के चरणों का ध्यान करके, गुरु गुरु करके, धन गुरु रामदास महाराज का नाम जप के परमात्मा की प्राप्ति होंदी है। तो आओ सारे फिर रल के आप सारे आखिए धन धन श्री गुरु रामदास। सारे एक रसना पवित्र करो, सारे आखो जी धन धन श्री गुरु, धन धन श्री गुरु रामदास। आओ सारे रल के आप इस पावन शब्द न जुड़िए। अग अंतक बदे ना सल कव, गुर रामदास तेरी शरण। धन गुरु रामदास महाराज जी, ताड़ी शरण दे विच आ करके इन्ना आनंद है, इन्ना सुख है कि जन्मां जन्मांतरां दे पाप कलेश दुख दरिद्र सारे दूर हो जाते हैं। आओ सारे रल के अपना इस पावन